और शायद ये कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 8.

2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर नंबर 7।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने ही नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कट फॉर यू। लेकिन दो

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना ये है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

Energy. It's hot. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: अजीब बात है ना, कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ सुपर हिट होते हैं और कुछ एवरग्रीन हो जाते हैं, और फिर बहुत ही कम गाने होते हैं जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर लगान ही लगान थी। 25 साल, इंटरव्यू, स्टोरी, स्क्रीनिंग्स, और हम सब फिर से उस दुनिया में लौट गए जहां एक छोटा सा गांव पूरी हुकूमत को चैलेंज कर रहा था। लेकिन जब भी लगान की बात होती है तो मेरा दिमाग फिल्म पर नहीं जाता, मेरा दिमाग स्टेडियम पर जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का काफी वक्त क्रिकेट ग्राउंड्स में गुजरता है। और मैंने एक चीज हर बार महसूस की है, जब मैच बड़ा हो, जब प्रेशर ज्यादा हो, जब लगता हो कि अब दिल सीधा गले में आ जाएगा, तो भीड़ में कहीं ना कहीं से एक आवाज उठती है, कोई हमसे जीत ना पावे चले चलो, और अचानक हजारों लोग एक हो जाते हैं। और सोचिए, ये गाना 25 साल पुराना है, इट्स 25 इयर्स ओल्ड, फिर भी पुराना नहीं लगता। यू मस्ट बी थिंकिंग, आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि ये जीत के बारे में नहीं है, ये हिम्मत के बारे में, ये उस पल के बारे में है जो दुनिया कहती है कि यार नहीं होगा, लेकिन आप कहते हैं एक बार और कोशिश करके देखते हैं। एंड थैंक गॉड कि जावेद साहब ने आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर के एक सजेशन को खारिज कर दिया।
1: द ट्यून वाज जावेद साहब के इस ट्यून में आपको जो लिखना लिखे नशा नशा नहीं रहेगा,
2: नशा नशा चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग सब नशे में आ गए थे।
3: किसान बारिश हो नहीं रही है, किसान भूखे मर रहे हैं, उन पे 3 बरस का लगान चढ़ा हुआ है, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझसे कह रहे हैं लिखो नशा नशा नशा नशा। अरे भाई ये कैसे हो सकता है?
4: चले चलो, मैंने लिखा। अरे नहीं, वो देखिए नशा नशा में क्या फ्लो था, मैं थोड़े दिनों तक ये गाइए इसमें भी फ्लो आ जाएगा।
0: और बस नशा नशा चला गया, जादू रह गया। 25 साल बाद भी हर स्टेडियम में, हर जनरेशन के साथ, हर नए सपने के साथ, लगान से चले चलो। Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3
1: वाह

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोक कर, हर नई एंट्री को देख कर, बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें वाकई टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा बजा।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

bate bine, bate. Și-o boe bade șan.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने। एक नई एंट्री है हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की, विच इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। वर्ल्ड म्यूजिक डे का वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन मिर्ची। शुरुआत करते हैं ऑन दिस काउंटडाउन विद गाना नंबर 10, अनीश सरकार हृदय का गाना। गाने का नाम है उड़ी उड़ी। दो हफ्ते से इस पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद द कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का गाना पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी इज ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय नंबर 10।

0: वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन जो ये वाला गाना है आदित्य रिखारी की आवाज, रैवेटोर का म्यूजिक अलॉन्ग विद कुटले खां, ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न म्यूजिक. एक पॉप स्टार, एक फोक आर्टिस्ट और एक कंटेम्प्रेरी उबर कूल प्रोड्यूसर, ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaiye. Mera handle is @RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho,

0: आई ट्रूली रियली दिल से बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। नाउ इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक तरह से हम सबके एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं कैप्चर करता है। आप मैं हर कोई एक जर्नी पर है, डेस्टिनेशन तो आने वाली है लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है और हम इसको तय करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने सपनों के पीछे हम काम कर रहे हैं। एंड समहाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एग्जैक्टली उन फीलिंग्स को कैप्चर कर पाता है जो फिल्म म्यूजिक बड़े पर्दे पे उतरने वाली कहानियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये वाली फीलिंग मे बी उस किरदार के लिए हो, बट व्हेन इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो मेरी आपकी आर्टिस्ट की ऑनेस्ट फीलिंग है। यू नो वो वाली फीलिंग जो हमारा सपना पूरा भी नहीं हुआ पर हम इतना तो आगे आ चुके हैं दैट वापस नहीं जा सकते, पर अब इतना आगे भी नहीं आए हैं कि सेलिब्रेट करना शुरू करें। गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम, इट्स बाय MC स्क्वायर, राधिका भिडे एंड विकेट सनी। मे बी ये नाम आपके लिए नए हो लेकिन जब आप गाना सुनेंगे आई नो इट विल हिट होम। म्यूजिक, गाने के लिरिक्स उस जर्नी को एक्नॉलेज करता है जो मुझे पता है यू आर ऑलरेडी ऑन इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अ नई नवेली एंट्रीज। गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय MC स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8। किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छांव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

खेत जगे सरवाड़े में एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 6 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना बताना है, कोई किस्सा कहानी शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट जो गाने हमें पसंद आते हैं ना, जो एक्चुअल में दिल से पसंद आते हैं, जो हम जितनी बार सुने उतना कम लगता है, वो शायद उस गाने के साथ जुड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स इज मेलोडी, लिरिक्स, आर्टिस्ट्री, वो सब है, एंड कूडोस टू दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। बट आज मैं ना उस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे होता है दैट एक ही गाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए वो पहले ब्रेकअप का गाना है, किसी के लिए एक शाम जब वो अकेले थे छत पे बैठ के आसमान देख रहे थे, मे बी उस गाने की दो लाइन जो सीधा उनके दिल के उस स्पॉट को हिट कर गई जो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा वंस इन रेयर ब्लू मून होता है ना, कोई गाना ऐसा दिल में उतरता है कि जब हम कुछ सालों बाद उस गाने को सुनते हैं, वो गाना तो अच्छा लगता ही है, बट वी ऑल्सो रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस, उस दिन जैसा फील हुआ था। क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक इज ऑल अबाउट how it makes us feel. I want to tell you about this one song, जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में actually आंसू आ गए थे। साल 2016 की बात है, मेरा पहला गोवा ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ। हम वैगेटर बीच पे थे, रात को 2 बज रहे थे, मजे कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे दोस्त जैम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त गाना गा रहा था, अपना गिटार उठाया एंड उसने ये गाना गाया।
2: शाम तन्हा,
0: कॉल्ड शाम तन्हा बाय अग्नि। मैं पूरा गाना आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट दिस सॉन्ग मेड मी फील बैक देन। उसने कुछ अलग नहीं किया मेरे दोस्त ने, कोई ऐसे परफॉर्मेंस में चार चांद नहीं लगे, उसकी आवाज थी, समुंदर की हवा थी, या वो लाइन्स दैट तेरे जाने से मैं अधूरा रह गया, आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज इट, बट दैट सॉन्ग मेड मी वीप। मैं आंखें चुरा चुरा के अपने दोस्तों से रो रही थी, बिकॉज इट मेड मी फील समथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फील कर रही हूँ उस गाने से पहले। इट इज अ गॉर्जियस सॉन्ग, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वेरी चेरिश्ड मेमोरीज एंड वेरी चेरिश्ड सॉन्ग फॉर मी। हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज मेरी पसंद का स्पॉटलाइट अग्नि द बैंड का गाना, गाने का नाम है शाम तन्हा। ट्रस्ट मी, दिस वन विल हिट होम। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

माय गॉड, 100 टाइम्स ओवर दिस सॉन्ग स्टिल मेक्स मी फील दैट वे. मोहन करण की आवाज, अग्नि द बैंड का गाना, दैट वॉज शाम तन्हा. At RJ Kanig on Instagram par out, tell me about a song like this which made you feel so strongly that aaj bhi jab aap gaane ko sunte ho, you go back to that experience jab ye gaana sabse zyada hit kiya tha. At RJ Kanig par aakar quickly is indie pop quiz ka bhi answer kare. Agni the band ka ek gaana tha jo ek reality TV show par aaya tha, which was all about love. Thoda sa hint dete hain aapko. At RJ Kanig par aake batao kaun sa hai ye gaana.

Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अकोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है अर्ज किया है. 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर अर्ज किया है. इस प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: Mirchi. It's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 8.

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है, एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21 जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gaana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची डॉट 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोककर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें बाकी टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

कि तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Energy. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

0: रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।
1: बचपन

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग। जरा बारी आ चुकी है वेदर का हाल चाल जानने की। फिलहाल बाहर टेम्परेचर हो रहा है 64 डिग्री फारेनहाइट एंड द स्काई इज डूइंग द क्लासिक ड्रामा क्वीन वाले मूव्स एंड मेकिंग अस फील लाइक 66 डिग्री फारेनहाइट है। सुबह से लेकर 2 बजे तक क्लाउड्स जो है उनका फुल अटेंडेंस रहने वाला है। आज बॉलीवुड टाइप की बरसात नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ा सॉफ्टली बरसात तो हो रही है। तो कैरी योर अम्ब्रेला विथ यू एंड हेयर स्टाइल ऐसा बनाना कि अगर बिगड़ भी जाए तो तुम मैनेज कर लो। हेड्स अप, ऐसे नेक्स्ट 24 आवर्स में 21 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है, अनलाइक यस्टरडे जब पूरी तरह से ड्राई था, यानी कि 0 मिलीमीटर्स की बरसात थी। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 64 टू 79 डिग्री फारेनहाइट है। फील होगा 65 से लेकर 76 डिग्री फारेनहाइट तक, बिकॉज ह्यूमिडिटी और सनलाइट मिलकर कुछ ऐसा तापमान फील करा रहे हैं। वैसे आज एक इंपॉर्टेंट बात भी है, फ्लड वॉच अलर्ट है विच इज इन इफेक्ट टिल 2 PM GMT। सो अगर आज तुम कम्यूट कर रहे हो है, द बेस्ट प्लान इज टू थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेकर चलना और पेशेंस रख। बेस्ट प्लान होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पेशेंस साथ में रखकर ही बाहर निकलना, और साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड फिलहाल सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और आप टाइम मशीन में रिवर्स का गियर लगाने वाले हैं और चलने वाले हैं 1633 में, जहां पर साइंटिस्ट गैलीलियो को ऑफिशियली फोर्स किया गया बोलने के लिए कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1815, नेपोलियन ने एम्परर की कुर्सी सेकेंड टाइम छोड़ दी आफ्टर वाटरलू। 1897 में इंडिया के चपेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स पे अटैक किया इन पुणे। एंड 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लॉन्च्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक और पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट को थोड़ा सा रीमिक्स कर दिया। 1941 में ऑपरेशन बारबोसा चेंज्ड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री। एंड 1986 में डिएगो मैराडोना ने वो लेजेंडरी और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैंड ऑफ गॉड गोल मारा था। एंड फिर 1978 में प्लूटो का मून शैरोन डिस्कवर हुआ था। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट

करना चाहते हो तो मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चाय गर्म रखी है या नहीं रखी है पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म न्यूज लेकर आई हूं। इंडिया की बैटिंग क्वीन स्मृति मंधाना ने एक और सिक्स सीधा हिस्ट्री के स्टैंड्स में मार दिया है। कैसे? शी इज बिकम द ओनली इंडियन टू फीचर ऑन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स लिस्ट। मतलब कि दुनिया कह रही है, एक्सक्यूज मी मैम, सेव सम अचीवमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ अस। और बॉस, ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं है, बल्कि इस साल के हाफ ए मार्क तक स्मृति हैज बिकम टीम इंडिया वुमेन्स लीडिंग रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल्स, और ऊपर से कैप्टन बन के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनका वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल भी दिलाया है। मतलब कि लीडरशिप तो मिल ही रही है, साथ साथ में रन भी है, ऑरा भी है। एक्सेल शीट होती तो अभी तक ओवरलोड हो जाती, हैंग हो जाती। वैसे बिग मिर्ची स्टाइल सल्यूट टू स्मृति मंधाना, प्रूविंग दैट क्वाइट कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू वर्ल्ड नोटिस करता है बाद में। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

एनर्जी मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। द पार्टी हैज ऑफिशियली स्टार्टेड। फिलहाल अभी तुम किचन में चाय चढ़ाकर टीम्स कॉल पे गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलने वाले हो या फिर स्कूल ड्रॉप ऑफ के बाद सीक्रेटली गाड़ी में 5 एक्स्ट्रा मिनट साइलेंस एंजॉय कर रहे हो। आई सी यू। देसी एक्सपैट लाइफ जो है ना उसका अनऑफिशियल स्पॉट यही है कि इंडिया की टाइमिंग और अमेरिका की टाइमिंग दोनों को मैच करे, दोनों को बैलेंस करे और उसके बाद शाम को खाने में क्या खाना है इसके प्लान्स बनाए। आज हम करने वाले हैं थोड़ा गॉसिप, थोड़ा मस्ती, थोड़ा नॉस्टैल्जिया एंड बिल्कुल ही फ्री में तुम्हें ढेर सारा मोटिवेशन मिलने वाला है और साथ साथ में मिर्चीदार बैंगर्स मिलने वाले एकदम गर्मा गर्म। फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर तुम्हें मिलती है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में टॉक्स के दौरान यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने एक लाइट मोमेंट क्रिएट किया जब उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। फिर रिवील किया कि इंडियन उनकी वाइफ है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिस पर रूम में काफी लाफ्टर भी हुआ। नंबर टू पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्स दिए है और वाटर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी इशू बताया है। इंडिया की साइड से पहले ही कहा गया है कि ट्रीटी पर उनका करंट पोजीशन अनचेंज्ड है। एंड नंबर थ्री पर क्रिकेट से रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से मूव कर सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स के साथ टॉक्स चल रही है उनकी, और रूमर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची पॉसिबल है कि ट्रेड कॉन्वर्सेशन भी हो जाए। क्रिकेट फैंस फिलहाल डिटेक्टिव मोड ऑन करके बैठे हुए हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री विद मी प्रिसिला। मुझसे शो के अलावा बात करनी है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर गर्मा गर्म एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट के हिसाब से टेलर स्विफ्ट मे हैव इनवाइटेड ब्लेक लाइवली टू हर वेडिंग एज अ वे टू स्मूथ थिंग्स ओवर एंड क्लोज द चैप्टर ऑन देयर रिपोर्टेड फ्रेंडशिप ड्रामा। बस ये भी कह रहे हैं कि टेंशंस अलेजेडली तब स्टार्ट हुए जब टेलर रिपोर्टेडली डिडंट लव गेटिंग पुल्ड इनटू ब्लेक्स लीगल सिचुएशन। और प्राइवेट टेक्स्ट के एक निकनेम मोमेंट ने भी इंटरनेट को डिटेक्टिव बना दिया है। ऑनेस्टली इट्स प्रीटी रिलेटेबल। हर देसी फ्रेंडशिप में एक ऐसा फेज आता है जहां पर पहले रील्स भेजी जाती है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर उसके बाद सीन जोन पर ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये सारी प्लानिंग होती है, यार अगले महीने मिलते हैं, अगले महीने पक्का प्लान बनाते हैं। इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी क्लोजर कम्स थ्रू कॉन्वर्सेशन। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगी तो क्लोजर कैसे आएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेडिंग्स, तनिष्क लेकर आए तुम्हारे लिए फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर तुम अपना पुराना गोल्ड ले जाकर उसको एकदम स्टाइलिश डायमंड में एक्सचेंज कर सकते हो। और उस गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें $5 पर ग्राम एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। और अगर तुम्हारा पुराना वाला गोल्ड 9 कैरेट से ऊपर है तो एक्सचेंज कराने पर तुम्हें 0% डिडक्शन भी पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नहीं पे करना है। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाइड है। फिलहाल मुझसे बातें करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। गली में

गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वो मोमेंट आ चुका है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है, यानी कि अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब पता करते हैं कि तुम्हारे साथ आज तुम्हारे सेलिब्रिटी बर्थडे ट्विंस कौन कौन है। यू शेयर योर डे विद मेरिल स्ट्रीप, एक्टिंग की GOAT लेवल ऑफ एनर्जी। साथ साथ में यू हैव थलापति विजय, जो सुपरस्टार तो है ही, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के CM भी बन चुके हैं। सिंगर स्क्वाड से यू हैव सिंडी लॉपर, ब्रूस कैंपबेल एंड रेडियो एंड टीवी फेस कार्सन डाली। मतलब आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम ऑलरेडी ओवर अचीवर हो ही। वैसे बर्थडे वाले लोग सेलिब्रेट करो लाउडली, केक खाओ एक्स्ट्रा कैलोरी इसके साथ, क्योंकि आज काउंट नहीं होती। और साथ में मुझे शाउट आउट भेजो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot. It feels so good.

0: देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाएं, आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पर तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick it kick it काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट

बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.

हेलो देयर माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड आप सुनने वाले हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर अनाउंस दैट ही इज स्टेपिंग डाउन एंड सेड ही विल सपोर्ट अ स्मूथ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट लीडर। दिस मींस द यूके कुड सी येट अनदर पीएम इन प्रीटी शॉर्ट स्पैन ऑफ इयर्स। And number two, per in Texas, an Indian origin homeowner said he removed Lord Ganesha idol after concerns raised during the home selling process. The story has sparked discussions online around personal expression, comfort, and housing experience. And number three, per Turkey's World Cup journey ended after FIFA's tie break rule came into play. Head to head results mattered before goal differences. यानी कि सिर्फ स्कोर नहीं, किस से हारे हो और किस से जीते हो वो भी रिपोर्ट कार्ड में काउंट होता है। फुटबॉल फैंस एवरीवेयर कलेक्टिवली सेइंग कि रूल बुक भी पढ़नी पड़ती है क्या। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची मॉर्निंग्स पर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो राशि जोन पार्ट वन।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: इरेज यानी कि मेष राशि, बॉस एनर्जी थोड़ी लो वॉल्यूम पर रखो आज। लेट पीपल कनेक्ट टू यू डायरेक्टली लाइक वाईफाई। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बेटा दुनिया सेव करने निकले थे लेकिन पहले खुद फन तो कर लो। वीकेंड वाइब्स एक्टिवेट करो, चाय, फ्रेंड्स, फ्रेश एयर, ये सब कुछ चलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज पिस्टाशियो, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सीईओ मोड ऑफ करो, टीम वर्क से ज्यादा माइलेज मिलने वाला है। जेंटल रिमाइंडर, हेल्पफुल पीपल आर नॉट सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। लकी कलर इज आइस मिंट, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, सन तुम्हारी साइड पे है, कॉन्फिडेंस फुल चार्ज करो, जो गोल पहले इम्पॉसिबल लग रहे थे आज उसको दोबारा से डीएम भेजो। लकी कलर इज सनराइज पीच, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, ड्रामा मत करो, कम बैक करो, चैलेंज को ट्रेलर समझो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई एम गेटिंग बिग ब्रेक थ्रू एनर्जी फ्रॉम यू। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 31। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, प्रोडक्टिविटी का प्रेशर कुकर ऑन है, जो काम करना है अब भी कर लो, और हाँ दूसरों के डाउट्स को रिसाइकल बिन में भी डाल दो। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 19। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट वन। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स। एंड ऑफ कोर्स मुझे जाकर फॉलो करो, मिर्ची पुरुष इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot. Give me, give me.

इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

0: राश इज ऑन पार्ट टू लेकर आ चुकी हूँ मैं बोले तो प्रिसला और मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स फाइंड आउट आज तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं।
1: मिर्ची राशि जोन
0: लीब्रा यानी तुला राशि और स्टैक्ड लग रहे हैं राइट परफेक्ट। तुम चैलेंज मोड में बेस्ट काम करते हो। माइंडसेट को कॉफी पिलाओ थोड़ा सा। लकी कलर इज मलबरी। लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अगर किसी दोस्त का जीपीएस गलत डायरेक्शन पर ले जा रहा है तो डिलीवरी सॉफ्ट रखो, ऑनेस्टी स्ट्रांग रखो, फ्यूचर यू को थैंक यू मिलने वाला है। लकी कलर इज मिडनाइट प्लम। लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, समवन सेइंग नाइस थिंग्स, सस्पिशियस मत हो जाओ। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट स्कैम नहीं होते हैं, एक्चुअल में रियलिटी होते हैं। रिसीव देम विद ग्रेस। लकी कलर इज कॉपर कलर। लकी नंबर इज 25। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हर मीटिंग तुम लीड नहीं करने वाले हो एंड गेस व्हाट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज डेलीगेशन इज इक्वल टू सेल्फ केयर। लकी कलर इज फॉरेस्ट स्टील। लकी नंबर इज 4। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, फन मोड को थोड़ा सा पैक करो एंड वर्क मोड को स्पॉटलाइट में लेकर आओ। एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो इंक्लूडिंग अपने खुद से। लकी कलर इज इंडिगो। लकी नंबर इज 37। पाइसीज यानी कि मीन राशि, मोटिवेशन का चार्जर मिल गया है, एनर्जी कंटेजियस है। तुम स्टार्ट तो करो और लोग तुम्हें फॉलो करते जाएंगे। क्रिएटर मोड अनलॉक हो चुका है तुम्हारा। लकी कलर इज रोज क्वार्ट्ज। लकी नंबर इज 13। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मुझे ढूंढोगे तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और बस ऐसे ही मेरे जाने का टाइम आ चुका है, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर से मुझे अब अलविदा टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन जाने से पहले कुछ बातें करना तो बनता है, राइट? सो इंडिया के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने एक सिंपल बट सॉलिड बात बोली है अबाउट फुटबॉल ड्रीम्स। जब लोग पूछते हैं इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, उनका आंसर था पहले रेगुलरली एशियन कप में होना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन पहले और स्पॉटलाइट बाद में मिलेगी। एंड ऑनेस्टली क्या ही लाइफ लेसन है ये जो एक्सपैट लाइफ है वो भी तो यही करने में गुजर जाती है। पहले ड्राइवर्स लाइसेंस लो, फिर क्रेडिट स्कोर लो, फिर कॉस्को मेंबरशिप लो, फिर दुनिया जीतने निकल हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली फाइनल डेस्टिनेशन देखते हैं और भूल जाते हैं कि गूगल मैप्स भी बोलता है कंटिन्यू स्टेट फॉर 500 माइल्स। सो आज का मिर्ची टेक अवे है, बड़ा ड्रीम रखो लेकिन स्मॉल विंस को भी हाई फाई देते हुए आगे बढ़ते जाओ, दैट्स प्रीटी इम्पोर्टेंट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब मेरे जाने का टाइम है। जाते जाते तुम्हें याद दिला दो कि मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और एक्स पर, वहां पर हम खूब गप्पे मारने वाले हैं। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 2444. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.

0: बेचारा मंडे कितने टॉर्चर झेलता है यार हमारे। हमें लगता है कि ये हमें टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हम मंडे को टॉर्चर कर देते हैं यार। कितने ताने देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, इसके आते के साथ ही मुंह बना लेते हैं और मंडे को बेमंडे बोल के एकदम ट्रॉमा में डाल देते हैं, है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मंडे है या फिर बिजली का लंबा चौड़ा बिल।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। और नहीं तो क्या यार, बेचारे मंडे को हम कैसे ट्रीट करते हैं ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। देखो, मंडे के दिन काम तो सभी करते हैं, क्रिप तो सभी करते हैं, लेकिन आज मिड डे मोहब्बत पर ना हम काम की बात करेंगे और ना हम क्रिप करेंगे, हम आज मंडे के दिन मस्ती की पाठशाला करेंगे। अरे यार, बचपन में आपको याद है कितने खेल खेला करते थे हम, कितने खिलक्कड़ हुआ करते थे, खिलाड़ी हुआ करते थे। अक्षय कुमार तो कम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हुआ करते थे, है ना। तो आज मस्ती की पाठशाला में उन्हीं सारे खेलों को हम याद करते हुए बे मंडे को एकदम मन वाला मंडे बना देंगे। काई बोलतास। तो बस फिर मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को मैं 90s के गियर में डाल रही हूँ। आप भी चेयर अप हो जाओ और इस बेमंडे को वन का वनडे कर दो यार। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज मिडडे मोहब्बत पर मंडे वाले दिन ना मस्ती की पाठशाला चल रही है, और बच्चों कैसे क्या आता है, कैरम। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मंडे तो वो सभी काम कर रहे होते हैं यार, मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम काम ना करके आराम करें, यानी कि मस्ती की पाठशाला लेकर आए यार, और बचपन के उन खेलों को याद करें जो कि हमने बड़े चाव से खेले हैं, जिनमें से एक आता था कैरम, जो अक्सर हम गर्मियों की छुट्टियों में जरूर खेला करते थे। बेचारे जो कैरम बोर्ड था, ये धूल खाया करता था पूरे साल, और जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी ना, तो भाई इसकी तो बहुत ही वक्त बढ़ जाया करती थी कूलर के सामने बैठ के, जो हम दिन भर कैरम खेला करते थे। क्या मजे आते थे यार उन दिनों में भी, और हमारे घर वाले भी खुश रहा करते थे कि चलो भाई सही है, सारे के सारे बच्चे एक ही कमरे के अंदर बंद हैं, तो हमें ना कोई टैब नहीं रखना पड़ेगा कि कौन कहां गया। दिन के टाइम पर मामूजन आते थे और हम बच्चों को कह के जाते थे कि सब के सब कूलर के अंदर ही रहना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और हमारे साथ कैरम हुआ करता था और हम हुआ करते थे, बस और क्या चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी घर की रसोई से थोड़ा बहुत रसना भी आ जाया करता था थोड़ी देर के अंदर, और जिंदगी में और क्या चाहिए था यार। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है कि आज भी तो क्या ही चाहिए, बस कैरम की वो रानी चाहिए होती है, रानी के बाद एक कवर चाहिए होता है। और आपको याद है कैसे लक्ष्मण रेखा खींच दिया करते थे हम, जब भी किसी दूसरे की रानी निकलने की बारी होती थी या कवर मिलने की बारी होती थी, तो बस लक्ष्मण रेखा खींच दिया करते थे, और उस पर लड़ाइयां हो जाया करती थी कि नहीं तूने वहां पे उंगली मारी, इस वजह से मेरी गोटी नहीं गई है, तूने कुछ किया है। फिर थोड़ी देर में हम ऊपर से लक्ष्मण रेखा खींच रहे होते थे, यानी कि लक्ष्मण रेखा 2.0 हो जाया करती थी, जिसको कि ऊपर से हवा में खींचा जाया करता था, और तब भी अगला कहा करता था तूने जरूर कुछ किया है, तूने गोटी मूव करी है, पक्की बात है। वो कैरम के बोर्ड पर पाउडर लगाना, गोटियों को जमाना और फिर उनको गिराना, इन सारी चीजों में जो सुकून मिला करता था ना, आज तो कुछ भी कर ले, कितनी ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ना कर लें, कितना ही खुद को पैम्पर क्यों ना कर लें, वो वाला सुकून नहीं आता यार, वो वाला सुकून नहीं आता जो फ्री में कूलर के सामने बैठ के एक कैरम बोर्ड पर आ जाया करता था, है कि नहीं। आपके कौन से फेवरेट गेम्स हुआ करते थे बचपन के, जरा मुझे डीएम करके बताना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत पर चल रही है मस्ती की पाठशाला ऑन अ मंडे और बच्चों छह से छुपन छुपाई। हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। हाय वो छुपन छुपाई के दिन याद है आपको? आज तो हम कितनी ही कोशिश कर लें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ छुपन छुपाई खेलने की नहीं खेल सकते। बचपन में खूब खेला करते थे लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं, अपने कजिन्स के साथ और दोस्तों के साथ खेला करते थे। यार कितना मजा आता था ना यार, कितनी देर के लिए हम छुप जाया करते थे, गायब हो जाया करते थे। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि एक बच्चा ऐसा छुपता था कि मिलता ही नहीं था। और कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि पढ़ाई का टाइम हो जाया करता था, होमवर्क का टाइम हो जाया करता था, तो पूरी पब्लिक डिस्पर्स और वो बच्चा अभी भी छुपा हुआ ही है। उसको बहुत लेट पता लगता था कि उस पर सबने गिव अप कर दिया है बॉस। और फिर वो बड़ा प्राउडली निकल के आया करता था कि है मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन मजेदारी वाली बात ये थी कि जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे तो हम धप्पी कहा करते थे और आइसपाइस कहा करते थे। वेल वो आइसपाइस तो होता ही नहीं था यार, बड़े हुए तो समझ में आया दैट वाज आइसपाई। और धप्पी का क्या मतलब था मुझे तो आज भी नहीं समझ में आया। हम तो आज भी उसको एवं इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां किसी की कोई चोरी पकड़ी जाती है हम क्या देते हैं धप्पी। क्या कर रहे थे? पर इस धप्पी में अलग एक मोहब्बत नहीं साउंड करती है? कितना वार्म लगता है धप्पी कहना। ऐसा लगता है जैसे ये धप्पी नहीं है बचपन की पप्पी है। कहां कहां नहीं छुपे यार छुपन छुपाई खेलते हुए। ऐसी ऐसी जगहों पे छुपे हैं ना कि जहां पर हमारे कपड़ों में चूने लग गए, हमारी कोनियों में चूने लग गए, लेकिन फिर भी ना खेलने से बाज नहीं आया करते थे। और हमारा बचपन तो ऐसा ही हुआ करता था यार, जब हम शाम को खेल के आया करते थे तो चूने में ही सने हुए होते थे, इतने कोनों में घुसते थे और चूने लगा लिया करते थे ना अपने ऊपर कि पूछो ही मत। आज गाड़ी में लाइफ में हर कहीं एडजस्ट करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन बचपन में छुपन छुपाई खेलते हुए छोटी सी छोटी जगह पर ऐसे घुस जाया करते थे जैसे इंसान नहीं बिल्ली का बच्चा है हम। और आज मिडडे मोहब्बत पर छुपन छुपाई की बड़ी याद आई। आपको आई कि नहीं आई? डीएम करके मुझे बताना एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ए बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, Sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: आज मिड्डे मोहब्बत पर चल रही है मस्ती की पाठशाला और रिवीजन में ऊ से ऊंच नीच। हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। याद है आपको ऊंच नीच का पापड़ा जो हम खेला करते थे? पता नहीं हम ऊंच नीच का पापड़ा क्यों कहा करते थे, बट मजा बड़ा आया करता था यार। ये पापड़ा सुनने और बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। और ये ऊंच नीच का जो पापड़ा हम खेला करते थे, ये अक्सर ऑफ कोर्स ऐसा होता था कि जो डेन दे रहा होता था वो बंदा नीचे होता था और जो डेन नहीं दे रहा होता था उसे ऊपर होना जरूरी होता था, और यहीं पर ऊंच नीच का पापड़ा हो जाया करता था। किसको पता था बचपन में ऊंच नीच का पापड़ा खेलने का मतलब ये था कि जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अडल्टहुड फेस करेंगे, तो एट दैट टाइम भी काफी सारी चीजें ऊंची और नीची हो जाएंगी और वो हमें और अच्छे से संभालनी होंगी। बट पता है मुझे क्या लगता है कि ये जो हम सारे गेम्स खेला करते थे ना बचपन में, ये जो सारे के सारे खिलाड़ी हम बने हैं ना, उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल और हमारा अलर्ट रहना जो है ना वो बड़ा सटीक हो गया। आपको नहीं लगता कैसे, मतलब हम अपनी दोनों आंखें तो जो आगे की हैं उनको खुली रखते ही रखते थे, ऐसा लगता था कि पीछे भी आंखें हैं। और मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी पोजिशनिंग होती थी और जिस तरीके से हम खड़े हुआ करते थे कि बस जरा कोई नीचे पैर रखे और हम पकड़ ले उसको और आउट कर दें। मुझे तो आज भी याद है कि ऊंच नीच के पापड़े पे ना मैं तो एक प्लास्टिक के डब्बे पर भी चढ़ी हुई खड़ी हुई थी कि यार ये ऊंचा है फर्श से, बस जब तक फर्श पे पैर नहीं लग रहा ना तब तक हम सेफ हैं। और उस प्लास्टिक के डब्बे पर भी खुद को बैलेंस करके बैठी हूँ मैं। आजकल देखा है आपने इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चल रहा है कि दो डंबल्स रखकर हील्स पहनकर बंदियां अपने आप को बैलेंस कर रही हैं। हम तो ये बैलेंस बचपन में ही कर चुके थे यार, ऊंच नीच का पापड़ा खेलते हुए। आपके बचपन के कौन से फेवरेट गेम्स थे मुझे डीएम करके बताओ ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत पर मस्ती की पाठशाला में अगले पार्ट का रिवीजन इज पर से पकड़म पकड़ाई। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। पहले तो मुझे ये बताओ मेरे यारा कि ये सारे नाम किसने रखे हैं यार हमारे बचपन के गेम्स के, कितने प्यारे नाम हैं, पकड़म पकड़ाई। हाँ, इट्स सो फनी राइट नाउ अगर इसके बारे में सोचो तो। लेकिन यार ये कितना प्यारा, कितना क्यूट नाम है, बड़ा ही मासूम सा नाम में इतनी मासूमियत है, और खेल में भी काफी मासूमियत हुआ करती थी। बस ऐसे दौड़ते थे हम डेन देते हुए जैसे कि कोई रेस का घोड़ा हो, और कोई चीज नजर ही नहीं आती थी, बस वो इंसान नजर आता था जिसको जाके हमें पकड़ना है। क्या जोश और फुर्ती से भागा करते थे। आज तो अगर वॉक करने की भी बात कर दी जाए ना तो लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं भाई, टू मच हो गया। और तब ओए होए, क्या लखन थे हमारे यार, इधर से उधर और उधर से इधर, फुल फुर्ती के साथ। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसके लिए हम कह सकते थे कि यार इसके अंदर फुर्ती नहीं है। सारे के सारे एक बराबर हुआ करते थे, और जिसमें ज्यादा फुर्ती हुआ करती थी वो तो ऑफ कोर्स देर से डिनर बनता था, और जब डिनर बन जाया करता था ना तो जल्दी फ्री भी हो जाया करता था, फटाक से पकड़ लिया करता था यार। लेकिन अब पकड़म पकड़ाई से मुझे एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि बड़ी जल्दी डेन खत्म हो जाया करता था। मतलब ऐसा होता था कि जैसे ही हमें पकड़ना शुरू करना होता था ना, उतनी देर में सारे इधर उधर भागने लग जाया करते थे, और कोई ना कोई तो हाथ आ ही जाया करता था। इस गेम में ना सब्र की जरूरत थी, ना वेट करने की जरूरत हुआ करती थी, बस भागो दौड़ो, और अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर आप इंसान को कितनी जल्दी पकड़ सकते हो पकड़ लो। जस्ट लाइक लाइफ राइट नाउ, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई अपनी चाहत को चेज करता हुआ उसे पहले हासिल कर रहा है, कोई अपनी चाहत को चेज करता हुआ थोड़े वक्त के बाद हासिल कर पा रहा है। लेकिन बेसिकली वही वाली बात है कि पहले भी जिंदगी पकड़म पकड़ाई थी और आज भी पकड़म पकड़ाई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त ने एक अलग ही सुबह में ली अंगड़ाई है। Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत पर मंडे के दिन यार हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं मस्ती की पाठशाला। और अगला पाठ है च से चिन चिन। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज जिसका चैन चैन मिटा हुआ है, वो बचपन में कभी चेन चेन खेल के चैन की सांस ले लिया करते थे। यार क्या वक्त हुआ करता था जब हम सारे इकट्ठे होके शाम को डिसाइड करते थे कि आज क्या खेलेंगे, चलो चेन चेन खेलते हैं। एक तो ये बचपन के खेल जिसमें एक वर्ड एक बार ही नहीं आता था, दो बार ही आना जरूरी होता था। मतलब हमें चैन नहीं मिलता था, हम खाली चेन बोल दे, अगर हमें चेन चेन बोलना जरूरी हुआ करता था, चेन इंटू टू। और जब हम चेन चेन खेला करते थे ना, तो वो चेन बड़ी लंबी हो जाया करती थी, वो इंटू टू नहीं रहती थी, इंटू टेन भी हो जाया करती थी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हम और हमारे दोस्त। और पता है ये जो चेन चेन गेम हुआ करता था ना, इससे एक बहुत बढ़िया सीख मिली है यार। जब आप अकेले दौड़ रहे होते हो ना, तो आप अपना फुल फोर्स लगा के दौड़ रहे होते हो, है ना, कि यार कोई साथ में जुड़ जाए, किसी को तो हम पकड़ लें ताकि हमारी चेन जो है वो लंबी होती जाए। एक जना जब हाथ में आ जाता है ना, तो लगता है कि हाँ चलो चेन थोड़ी बड़ी हुई, तो थोड़ा सा आराम हो जाता है एक और जने को पकड़ने में। और ऐसे ही करते करते जैसे ही चेन एकदम लंबी हो जाती है ना, तो वो जो आखिरी बंदा बचा हुआ होता है ना, उसको बड़ी दिक्कत होती है हमसे बचने में। खास बात यहाँ ये होती है कि चेन जितनी लंबी होती चली जाती है ना, काम उतना ही अच्छा होता चला जाता है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जितनी लंबी चेन है, इस लंबी सी चेन का फर्स्ट से लेकर टेंथ इंसान तक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे पकड़ पाना है। अदरवाइज तो हम सारे के सारे एक साथ करके गिर जाया करते थे। ये जो सारे हमारे बचपन के खेल है ना, मुझे लगता है कि इनमें सब में ना छोटी छोटी सीख छुपी हुई थी। जैसे कि वो मॉरल साइंस के चैप्टर्स नहीं हुआ करते थे जिसमें एंड में आता था मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वैसे मॉरल ऑफ द गेम भी हुआ करते थे। इट्स जस्ट दैट कि वो तब नहीं पता थे, आज ज्यादा समझ में आ रहे, बड़े जो हो गए यार, हाय क्यों। लेकिन अब जब बड़े हो ही गए हैं, तो बचपन की यादों को ताजा करते हुए वही बचपन के खेलों के डिस्कशंस चल रहे हैं मिडडे मोहब्बत पर। आप भी मुझे डीएम करके बता सकते हो कि आपके फेवरेट गेम्स कौन से हुआ करते थे बचपन वाले। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, एंड फॉर नाउ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत पर मंडे के दिन चल रही है मस्ती की पाठशाला और अगला पार्ट इज अ से ABCD। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुझे नहीं पता आप इसे ABCD बोलते थे या नहीं, मैं आपको गेम समझाती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। सीढ़ियों पे एक गेम नहीं खेला करते थे जहाँ पर हम अल्फाबेट्स बोला करते थे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सीढ़ियों को माना करते थे। सबसे दूर होता था डी, और कभी कभी अगर बड़े बड़े और ऊंची हाइट के ही बच्चे खेल रहे होते थे ना तो ई भी आ जाया करता था। हमने तो यहाँ तक की एफ भी खेला है यार, और एफ हुआ करता था वो जो फर्श हुआ करती थी उसको टच करके वापस भागना होता था। मुझे ना ये गेम बड़ा डेंजर लगा करता था यार, क्योंकि हमें जंप करना होता था ए से डी तक या डी से ए तक। लेकिन एक बात है यार, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की दाद नहीं पूरी बत्तीसी देनी चाहिए यार, क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी बचपन में। आज तो यार सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ही लोगों को लगता है कि एक टास्क है, एलिवेटर ले लेते हैं, एस्केलेटर ले लेते हैं। सीढ़ियां तो बेचारी एक कोने में पड़ी हुई होती है, उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा होता है। हम थे यार जिन्होंने सीढ़ियों को कितना पूछा है, और कितना पूछा ही नहीं पूछा है भाई, वहां पर हम ये गेम खेला करते थे। हमेशा सीढ़ियों पे रौनक रहा करती थी, कभी हमने सीढ़ियों को अकेला महसूस नहीं करवाया है। वैसे आप मुझे बता सकते हो अगर आप भी इस गेम को ABCD ही बोला करते थे या कुछ और। DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत पर चल रही है मस्ती की पाठशाला, और वो भी मंडे के दिन। सो कम जॉइन अस, बिकॉज अगला पार्ट इज ट से टीचर। टीचर, हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। कहां हम अपनी टीचर्स को इतना बड़ा माना करते थे और खुद टीचर टीचर खेलने में बड़ा फक्र महसूस किया करते थे। समझ में आया कि यार इस दुनिया में सबसे बड़ी टीचर तो जिंदगी है यार। जैसे जैसे बड़े हुए, वक्त पलटता गया और जिंदगी समझ में आती गई, तब समझ में आया कि अरे ये तो छुपी रुस्तम निकली यार। इस जिंदगी को जिसको कि हमने गहराई से कभी समझा ही नहीं, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस को कभी अपनाया ही नहीं था बचपन में, वो तो बिल्कुल बहुत बड़ी टीचर क्या प्रोफेसर निकल कर आ गई यार। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जिंदगी, बचपन में हमने टीचर टीचर बड़े मजे में खेला है यार। आई स्टिल रिमेम्बर कि किस तरीके से मम्मा की हील्स पहनकर, उनके दुपट्टे की साड़ी बनाकर एक क्यूट सा बड़ा ही बिगड़ा हुआ सा मेकअप किया करते थे और अपनी इमेजिनरी क्लास में एकदम ऐसे एंटर किया करते थे जैसे कि वाकई में हम टीचर ही हैं। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल जाया करती थी। आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई एम इन ऑफ माई सेल्फ कि एक्टिंग तो तभी से शुरू कर दी थी बॉस, एकदम कैरेक्टर में आ जाया करती थी। एंड जब भी मैं टीचर टीचर खेल रही होती थी ना, आई यूज टू बी थिंकिंग अबाउट माई फेवरेट टीचर कि वो किस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन विद अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एटीट्यूड। एटीट्यूड देना तो जरूरी होता था यार जब मैं टीचर बन जाया करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम द टीचर और बाकी सब बच्चे हैं, तुम्हें क्या पता चीजों के बारे में, वो वाला एटीट्यूड आ जाया करता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मम्मा का पर्स लेकर बगल में एक किताब दबाकर जब क्लास में एंटर होती थी ना, तो ऐसे ही हुआ करती थी मैं। कोई कैमराज नहीं हुआ करते थे, कोई भी विटनेस भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि क्लास भी इमेजिनरी और स्टूडेंट्स भी इमेजिनरी। लेकिन फिर भी आई यूज टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस बींग अ टीचर देयर। अटेंडेंस रजिस्टर भी हुआ करता था बॉस, और नाम भी लिखे जाते थे, उन नाम के आगे हम टिक भी लगाते थे और नाम पुकारे भी जाया करते थे। पुकारती भी मैं थी और जवाब भी मैं ही दिया करती थी। बस फर्क ये था कि पुकारती मैं टीचर की आवाज में थी और जवाब मैं स्टूडेंट की आवाज भी दिया करती थी, जैसे कि नेहा प्रेजेंट मैम। माय गॉड, तब तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था यार। आज अगर सोशल मीडिया पे ये चीज कवर कर ली जाए ना, फट से वायरल हो जाएगी वाकई में। लेकिन तब हम वायरल होने के लिए नहीं किया करते थे यार ये सब, बस अपने मन के लिए किया करते थे, खुद को खुश रखने के लिए किया करते थे, और बस किया करते थे यार, जताया नहीं करते थे दुनिया को कि हम कुछ कर रहे हैं। आपके कौन से बचपन की फेवरेट गेम्स हुआ करते थे, मुझे जरा डीएम करके बताओ ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कृष्णा और सलीम की आवाज में चक दे इंडिया से दिस गाना इस कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: कौन कहता है कि पेट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ जोशीले ही होने चाहिए. चक दे इंडिया का जो ये गाना है इसने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि पेट्रियोटिज्म में सिर्फ और सिर्फ जोश भरा हो. पेट्रियोटिज्म में रोमांस भी होता है बॉस. और ये जो इतना खूबसूरत गाना है मौला मेरे ले ले मेरी जान, ये इस बात का पूरा पूरा एग्जाम्पल है कि जब आप अपनी धरती से अपने देश से मोहब्बत करते हो ना तो वो इश्क भी माना जा सकता है. एंड दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग साउंड्स लाइक कि एक इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार अपने देश अपनी धरती अपनी माटी से कर रहा है. गाने की ये लिरिक्स जहाँ ये कहा गया है कि तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन, यानी कि तेरे तिरंगे का तीसरा रंग मैं था. मैंने अपनी जिंदगी तेरे अकॉर्डिंग जी है. तू ही मेरा खुदा है और तू ही मेरी शान है. फिर ये बात कि तेरे संग खेली होली तेरे संग की दिवाली तेरे आंगनों की छाया तेरे संग सावन आया. फेर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले लौट के तू आएगा रे शर्त लगा ले. एंड इट ऑल स्पीक्स अबाउट द लव फॉर वंस कंट्री. जैसा कि इस फिल्म में बताया भी गया था कि किस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन अपनी कंट्री को इतनी मोहब्बत करता है और किस तरीके से एक गलतफहमी के चलते उस इंसान पर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता. वहीं ये सारी बातें अप्लाई होती हैं जहां वो अपने देश से ही कह रहा होता है कि तेरे संग होली खेली तेरे संग दिवाली खेली तेरे अंगने की छाया में जिए तेरे साथ सावन जिया. भले ही तू नजरें चुरा ले लेकिन तू लौट के वापस आएगा ये देश. और इसी के साथ जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाते हुए जा रही हूँ. सो एंजॉय द ट्रैक. और मैं कहती हूँ हम है रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Michi, it's hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole

रीमिक्स वाला ओरिजिनल गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस ओजी गाने की हम बात कर रहे हैं ना, इसके पता नहीं कितने रीमिक्स एंड रीमिक्सेस बने हैं। एक तो वेब सीरीज आई थी ना जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर थे, रॉयल्स करके, उसमें भी ये गाना यूज हुआ था। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रीमिक्स इस गाने का वॉज रिलीज इन 2002-2003, डीजे अकील का रीमिक्स। और ऑडियो से ज्यादा इसका वीडियो आपको शायद याद होगा 90s के बच्चों को खास करके, बिकॉज बहुत उठानी पड़ती थी इसका वीडियो देखने के लिए, घर वालों से चुप चुपा के देखना पड़ता था। याद है 90s-2000 में वो जो फोन हॉटलाइंस चलती थी जिसपे कॉल करके आप दोस्ती कर सकते थे, वो वाला थीम था इस वीडियो का। पिंक ड्रेस में तीन मॉडल्स होती हैं और फिर वो एक बोलती है, अकेले हो दोस्ती करोगे, एंड देन दिस सॉन्ग प्लेज, जो ओरिजिनली है 1982 की फिल्म ये वादा रहा से। इसे कंपोज किया है आर.डी. बर्मन ने, लिखा है गुलशन बावरा ने, ब्यूटिफुली सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, it's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारों, only on मिर्ची.

0: फिल्म आपकी कसम में एक सीन था जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को एक थप्पड़ मारना था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म में सिचुएशन कुछ यूं रहती है ना कि राजेश खन्ना ऐसे शकी हस्बैंड होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि उनकी वाइफ मुमताज का उनके फ्रेंड संजीव कुमार से अफेयर चल रहा है। तो ये सीन जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने काफी जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह ये थी कि किसी एक्ट्रेस ने ये रूमर फैलाया था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का अफेयर था। तो ये तब की कोई खुन्नस, तब का कोई गुस्सा संजीव कुमार पे निकला। ऐसा शेयर किया था अंजू महेंद्रू ने एक पुराने इंटरव्यू में। बताइए, पर्दे पर हम जो सीन्स देखते थे या देखते हैं, उनके पीछे क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं? पता नहीं सच भी होती हैं कि नहीं। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सुनो कहा, कहा, सुना।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

कुछ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं कि वो गाने तो चलो आइकॉनिक, क्लासिक, ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनका जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक चाहे वो बीच में कहीं आ रहा है अंतरे से पहले, या एकदम वो म्यूजिक जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है, वो अलग ही तरह का क्लासिक है। मतलब वो म्यूजिक उस गाने की पहचान बन जाता है। जैसे कि आने वाला गाना द ग्रेट गैम्बलर का दो लफ्जों की है दिल की कहानी, और अक्सर हम ना म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं कि ये गाना आरडी बर्मन ने कंपोज किया है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने म्यूजिशियंस काम करते थे। कोई गिटार बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है। तो इस गाने में जो आइकॉनिक मैंडोलिन ट्यून है ना बिगनिंग की, ये मैंडोलिन प्ले किया था म्यूजिशियन अरविंद हल्दीपुर जी ने। और भी कई गानों में उन्होंने गिटार प्ले किया है, मैंडोलिन प्ले किया है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

मासूम फिल्म का गाना ब्रिलियंटली संग बाय अनूप घोषाल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर अनूप घोषाल जी ने मेनली बंगाली गाने गाए हैं। हिंदी गाने उन्होंने बहुत लिमिटेड गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं क्या गाए हैं, जैसे कि ये वाला। और मैं ना बड़ी हैरान हुई जो मुझे पता चला कि ये गाना उस साल 31st फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। मासूम फिल्म को वैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन ये गाना नॉमिनेटेड ही नहीं था। नॉमिनेशन में 3 गाने शब्बीर कुमार साहब के थे, आई थिंक बेताब फिल्म के, और 2 गाने किशोर दा के थे। एक तो उनका सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल, और दूसरा ये गाना जिसे एक्चुअली उस साल अवार्ड मिला था। सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग पहले एक डुएट सॉन्ग होने वाला था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी आशा भोसले एंड उषा उत्थुप जी, इनफैक्ट दोनों ने इस गाने की बहुत रिहर्सल्स भी की थी। ये बात उषा उत्थुप जी ने एक टेलीविजन शो में शेयर की थी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग उषा उत्थुप जी को बुलाया ही नहीं गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा कि कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको बताया गया कि ये गाना अकेले आशा जी गा रही हैं। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई उषा जी को, लेकिन उन्होंने फिर इंटरव्यू में आगे ये शेयर किया कि वो गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं जिसपे कम्प्लीटली लिखा है उषा उत्थुप जी का नाम। क्या ब्रिलियंटली गाया है उन्होंने ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: अमर प्रेम फिल्म का ब्यूटीफुल गाना चिंगारी कोई भड़के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने की शूटिंग कैसे हुई थी एक बार ना कपिल शर्मा शो पे शर्मिला टैगोर जी ने शेयर किया था, सुनिए जरा।
1: अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में चिंगारी कोई सच अ लवली सॉन्ग, आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया, मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट, और फिर हमें चल के जाना पड़ता था, अजीब सा बदबू, स्मेल वाज लाइक दैट, बट डिस्पाइट हाउ लवली वी लुक ऑल द इल्यूजन नाउ विल गो।
0: तो अभी आप जब ये गाना सुनेंगे ना याद कीजिएगा कि शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ऐसे बदबूदार पानी सूंघते सूंघते गाना पिक्चराइज कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आपको पता है प्रेम चोपड़ा साहब और राज कपूर साहब दोनों साडू ब्रदर इन लॉज रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो वाइव्स रही हैं वो सिस्टर्स रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और साडू साहब की फिल्म बॉबी से ही प्रेम चोपड़ा साहब को मिला उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग। एक बार इस फिल्म में काम करने की स्टोरी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: राज कपूर साहब वाज अ जीनियस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, यार एक पिक्चर में काम करना था उन्हें मेरी। मैंने कहा, मैं तो उछल गया, मैं कहा बाय नॉट, करेंगे जी काम आपके साथ, कौन नहीं काम करेगा। बस वो बातों में उन्होंने कहा ये है स्पेशल अपेयरेंस। अरे मैंने कहा अच्छा, आपके लिए कुछ भी करूं। अब वहां पर पहुंचे कट पूना, तो मैंने पूछता रहा था बीच में, राज साहब क्या डायलॉग क्या है यार, मेरे को सीन्स वीन्स तो बता दीजिए। बताएंगे यार, बताएंगे बताएंगे। तो वहां पहुंचे तो कहते जी आपका एक ही डायलॉग सारी पिक्चर में, वो क्या है? प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: गूज़बम्स अभी भी सुन के डर लगता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ, तो ये शेर है असद भोपाली साहब का। ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। ये वही असद भोपाली साहब हैं जिन्होंने कई सुंदर गाने लिखे हैं, जैसे कि पारस मणि एक पुरानी फिल्म थी उसके गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये वही गाना है जो राजश्रीज की फिल्म हम आपके हैं कौन के एक बहुत ही प्यारे सीन में इस्तेमाल हुआ था, जहां सारी फैमिली बैठ के वो गेम खेल रही होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित का वो आहा वाला मोमेंट था, और उसके बाद माए नी माए मुंडेर पे तेरी वो गाना आता है उस सीन के बाद। खैर, राजश्रीज की एक और आइकॉनिक फिल्म मैंने प्यार किया के गाने लिखे हैं असद भोपाली साहब ने, तो एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: रेखा ने जब हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की तो उनको उनके लुक्स, उनके वेट के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसी वजह से काफी एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। क्या रेखा ने भी कभी ऐसा किया कि उनको पता चला हो कि फलानी फिल्म का हीरो ये है और इसके साथ वो काम नहीं करेंगी? सुनिए एक बार एक पुराने और एक पॉपुलर इंटरव्यू में रेखा ने इस बारे में क्या कहा था।
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये जरूर कहा, सजेशन जरूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं, सबके साथ मेरा अच्छा रैपो।
0: और कौन से वो एक्टर थे जिनके साथ उनका रैपो सबसे बढ़िया था?
1: बहुत अच्छा, मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। Unfortunately, अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ।
0: Well, ये mid-80s का इंटरव्यू था। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ उनकी कुछ फिल्में आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: क्या कहा?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दिस आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय आरडी बर्मन। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये गाना शायद कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स 1970 की द ट्रेन के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने वाले थे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, लेकिन वो इन दिनों बहुत बिजी थे। फिर एसडी बर्मन साहब को भी अप्रोच किया गया, वो भी नहीं इसका म्यूजिक कर पाए, एंड देन इवेंचुअली आरडी बर्मन को साइन किया गया। एंड फिर एज यूजुअल आरडी ने अपने आरडीएक्स ब्रूम गाने बना दिए, जिनमें से एक ये भी था, द वेरी आइकॉनिक, द वेरी क्लासिक गुलाबी आंखें। फिलहाल आपने किसकी याद में अपनी आंखें गुलाबी, लाल, पीली, नीली कर रखी है? जिसकी भी याद में कर रखी है, कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर चला गया है उसको, और आपको डेडिकेटेड है ये अगला गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन

बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में चाहे इनका नाम नहीं लिया जाता हो, लेकिन सच बात यह है कि बहुत ही बड़े बड़े बढ़िया गाने इन्होंने बनाए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है इनके नाम पर। वो अचीवमेंट ये कि फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कॉम्पोजिशन जैसे मेल डोमिनेटेड एरिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई बढ़िया म्यूजिक बना के। मैं बात कर रही हूँ उषा खन्ना जी की, एंड दैट टू व्हेन शी स्टार्टेड लेट 50s, 60s, 70s, उस टाइम में। तो उषा खन्ना जी के कंपोज किए हुए गाने तो हम सुनेंगे ही, उनकी बातें भी और करेंगे, लेकिन म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ गाने गाए भी हैं। और नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं वो मेनली किशोर दा ने गाया है, लेकिन इसमें जो थोड़े से आपको फीमेल वोकल्स सुनाई देंगे, वो जो एक हमिंग है फीमेल वॉइस में, वो उषा खन्ना जी की है। जॉनी मेरा नाम का ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भीड़ में रह के भी अकेला महसूस करना इज माय बिगेस्ट फियर।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और इस दुनिया में हर दूसरे इंसान का कोई ना कोई भय, कोई ना कोई फियर तो जरूर रहता है यार। और अचानक से डर भय की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज रिसेंटली एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने अपने डर की बात शेयर की, एंड फॉर हिम इट इज अकेले खाना खाना। वेल, ये थॉट जब मेरे दिमाग में आता है देन आई एम क्वाइट यूज टू इट, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और ऑन अ डेली बेसिस में अकेले ही खाना खाती हूँ, सो आई एम ओके डूइंग दैट। बट एट द सेम टाइम अगर 10 लोग हैं मेरे आसपास, मैं उस भीड़ में हूँ फिर भी अकेला महसूस कर रही हूँ, दैट इज समथिंग जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता। एंड कसम से बता रही हूँ, आई गेट इन टू अ पैनिक अटैक सिचुएशन। वैसे आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा डर तो जरूर होगा यार, सो लेट्स शेयर ना, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। एक दूसरे का केयर कर सकते हैं। MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे साथ कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट

0: 98.3 मिर्ची, it's hot.
1: Radio Mirchi, Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.
2: अकड़ी बकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
3: दिक्कीरो दिक्कीरो
4: Punjab.

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। लीक पे लीक। नहीं, मैं वापस से पेपर लीक की बात नहीं कर रही यार, बट हिंदुस्तान के एक अलग फ्रेटर्निटी में भी लीक चलता है, एंड दैट इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो बेसिकली करण औजला तो आपको पता होगा, उनके कुछ अनरिलीज ट्रैक्स एंड ऑडियो स्निपेट्स जो हैं वो ऑफिशियल रिलीज के पहले ही लीक हो गए। ये है बेसिकली उनके अपकमिंग एल्बम सी वॉक के स्निपेट्स, एंड इस चीज को बहुत ही अलग वे में लेते हुए, मतलब थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हुए, खुद करण औजला ने इन क्लिप्स को व्यूअर्स के लिए ऑनलाइन कर दिया। इसको बोलते हैं नहले पे दहला। चलिए कॉकटेल 2 के कमाई की बात कर लेते हैं, जिसने फर्स्ट डे यानी ओपनिंग डे पे 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया। वेल, फिल्म को बनाने में टोटल बजट लगा था 150 करोड़ का, और जिस हिसाब से फिल्म की कमाई जा रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि खर्चे निकल जाएंगे। रणवीर सिंह ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है, वो अगले 18 महीनों तक मीडिया से बिल्कुल दूर रहने वाले हैं, और इस चीज की कसम भी खा ली है उन्होंने। अब इस चीज का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, वो डॉन 3 को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी हो, या फिर उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रलय को लेकर ये डिसीजन लिया है कि भाई कमरा बंद करके मैं करूंगा इस बार फिर से तैयारी। खैर बात जो भी हो, बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स